0: जेठा तुम्हारे जाने का पाप इंद्री मने जाने का लाओ के काम करे नगानो दो दिन पंचाप के इंद्री मंत्र सारा बुलतों का
1: सोपन दिलो ना पंगुशने आरा कुरान नोटे की जेतुंगो लो दे मान मजा